आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: Yes.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
2: बिंदास।
3: चांदनी रातें
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो रहे हैं। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम उड़ान भरने वाले हैं और याद दिलाने वाले हैं कि बाऊ मुझाए मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट बिंदास होनी चाहिए। और मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पे बातें हमारे पास बहुत सारे हैं, मगर गाने भी आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे हम लेकर आए हैं। उसके साथ साथ शो की शुरुआत हम एक कॉशन के साथ करना चाहेंगे। देखिए यार, इंसान की फितरत है ये, जो मना करते हैं लोग हम वही करते हैं। अगर हमसे कहते हैं कि भाई तुम खेलने मत जाओ पढ़ाई करो, तो हम खेलने जाएंगे। कोई हमसे बोले कि भाई तुम टीवी मत देखो पढ़ाई करो, हम टीवी देखेंगे। मगर किसी ने ये नहीं बोला कि तुम पढ़ाई मत करो टीवी देखो। अगर ऐसा बोल दे तो शायद अलग हो जाता कुछ, मगर क्या करे, किसी ने बोला नहीं। कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। मगर यहाँ पे बहुत सारी बातें और भी हम करेंगे और ढेर सारे किस्से खबरें कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे, तो तैयार हो जाइए। मगर उसके पहले अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले, अभी के अभी आप अपने गुड मॉर्निंग कोड्स, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, वीकेंड के प्लान्स क्या क्या है, सब मुझे डिटेल में मैसेज कीजिए 3311063 पर। फिलहाल यहाँ पे पति पत्नी और वो दो मूवी का गाना हम सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार gold and diamonds, golden summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewellery purchases. Plus, exchange your gold jewellery and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाई फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात app and experience faster consultations. Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई चलिए जरा मैसेजेस देख लेते हैं जो हमारे पास एक एक कर आए हैं। मुझे निशांत कुमार जी का मैसेज आया है, उन्होंने जो है हमें मैसेज भेजा है, लिखा है गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे टू यू माय डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन जो है हम विश करते हैं। और उनके इसके साथ साथ उन्होंने उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं भैया प्लीज डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर माय लविंग गर्ल अनु, रियल नेम अनिका मेनन, फ्रॉम हर अच्छुवेटा निशांत, इट्स मी। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ साथ अबरार भाई का भी मैसेज आया है। अबरार भाई ने मैसेज किया है, लिखा है गुड मॉर्निंग, एवरी चैलेंज यू ओवरकम बिकम्स अ रिमाइंडर दैट यू आर स्ट्रॉन्गर दैन द ऑब्स्टिकल्स दैट वंस स्टूड इन योर वे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जैसे जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम और स्ट्रांग होते जाते हैं और बेहतर होते जाते हैं। और उसके साथ साथ मुझे मैसेज भेजा है मोहम्मद असलम भाई ने, जिन्होंने लिखा है विश यू अ वेरी हैप्पी फ्रेश एंड चीयरफुल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अर्श भाई का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग भाई करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, लिखा है होप इज हैविंग अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, गुड मॉर्निंग करके। जी बिल्कुल सही बात, शत प्रतिशत हम आपसे सहमत हैं। और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। उसके साथ साथ हमें नाजनी जी का मैसेज आया है, नाजनी जी ने एक कोट भेजा है, हमें लिखा है कि गुड मॉर्निंग, मे गॉड ग्रांट यू अ डे फुल ऑफ ब्राइट मोमेंट्स एंड ब्यूटिफुल सरप्राइजेस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया बिंदास और क्यूट दिन हम विश करते हैं। अरहम भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी मुझे एक फोटो भेजा है, सुबह सुबह एकदम बहुत ही बढ़िया से सनराइज ऐसे हो रहा है कहीं, मतलब किसी सिग्नल के पास का फोटो है ये। और लिखा है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप गुड मॉर्निंग, और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन जो है हम विश करते हैं। और चलिए इसी खुशी में अगला गाना प्ले करके आगे बढ़ते हैं, मगर थोड़ी देर में गानों के उस पार हम आएंगे एक सवाल लेकर। तो सवाल के लिए तैयार हो जाइए और गाने सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindaas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 6:31 हो रहा है और मेरे पास एक सवाल है। सवाल ये है कि फुटबॉल में यानी कि फीफा वर्ल्ड कप में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके पास सबसे ज्यादा असिस्ट है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके पास सबसे ज्यादा असिस्ट है, ये आपको बताना है 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी मैसेज करके। देखते हैं ये फुटबॉल के बारे में कितना आप जानते हैं, कितने तेज हैं। तो यही सवाल पूछते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। राहत फतेह अली खान साहब और श्रेया घोषाल की आवाज में सुनते हैं सिंग इज किंग का एक बहुत ही प्यारा गाना। मुझे पसंद भी है गाना बहुत। तो ये गाना आप सभी को स्पेशली डेडिकेट करते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई, थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था मैंने कि फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके पास सबसे ज्यादा असिस्ट हैं, और यहाँ पे हमारे पास जवाब आया है। मुझे अर्श भाई ने मैसेज भेजा है, लिखा है लाइनल मेसी फ्रॉम अर्जेंटीना 9 असिस्ट। संधू जी ने मैसेज किया है लाइनल मेसी, उसके साथ साथ प्रशांत जी ने मैसेज किया है मेसी द मैजिशियन करके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ प्राइवेट मैसेज टू सुदेव ओनली नॉट योर आइडल। अरे अरे अरे सर, मेरा आइडल कोई है नहीं फुटबॉल में। नहीं, एक्चुअली है, एक्चुअली आई हैव एन आइडल एंड वो है रोनाल्डो, बट नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इट इज R9 रोनाल्डो फिनोमिनो। एंड उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है अनिल जी का, उन्होंने भी बोला है लाइनल मेसी। और इजिप्ट के साथ के मैच, साथ में जो मैच हुआ था उसमें मेसी ने रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया था। अब थोड़ा मैं डिटेल भी आपको दे देता हूं। तो इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो होल्ड करते थे डिएगो मैराडोना 8 असिस्ट के साथ, एंड मेसी ने जो है उस रिकॉर्ड को सरपास कर दिया है एंड ही इज नाउ द ऑल टाइम रिकॉर्ड होल्डर और फॉर असिस्ट इन फीफा वर्ल्ड कप। बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि कैंपेन अभी और बाकी है, तो ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड जो है और आगे बढ़ने वाला है, नया रिकॉर्ड जो है सेट होने वाला है। और यही बात बोलते हुए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
1: रेडियो ऑलिव पर। सॉन्ग ऑफ द आवर, ये

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

टेम्परेचर जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस और हवा जो है 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे पिघला तो नहीं देगी, क्योंकि 10 बजे के बाद जब बाहर जाते हैं हम तो भाई जो भपका लगता है गर्म हवा का वो भाई मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया मेरे साथ करके सारी गलतियां जो जिंदगी में की थी अभी तक सब याद आ जाती हैं। मगर हाँ बाहर गर्मी जरूर है और काफी सनी वेदर भी है। और आप बताइए भाई बाहर कैसे नजारे हैं, जरा मुझे डिटेल में बताइए, मैसेज कीजिए तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी। फिलहाल यहाँ पे हम गाना प्ले करते हैं मैं वापस आऊंगा मूवी का, बहुत ही प्यारा गाना है और इस गाने को एंजॉय करते हुए कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड

0: प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi everyone, this is Benny Deol here.
3: Benny Deol here.
2: Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: Radio Olive, our number one.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
1: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और मेरे पास यहाँ पे मैसेज आया है, संधू जी का मैसेज आया है। लिखा उन्होंने, गुड मॉर्निंग ब्रो, हरपाल संधू फ्रॉम जिक्री दुकान जियो बिंदास। तो मैंने भी मैसेज किया, मॉर्निंग पाजी किया है, तो उन्होंने बोला बढ़िया पाजी। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उसके साथ साथ सामी भाई का भी मैसेज आया है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, एक फोटो भेजा है, बहुत ही खूबसूरत सा एक बोगनविले का फोटो भेजा है। लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, हाउ आर यू? आई विश लवली मॉर्निंग एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस फॉर एवर। थैंक यू सो मच जी, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन जो है हम विश करते हैं। और इसी के साथ साथ एक काम करते हैं, जबरदस्त हिट सुनते हैं। केके की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: cars in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August.
1: Terms and conditions apply.
0: Joyalu Cars, world's favorite jeweler.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million reals cash prizes.
2: Jeetne ke 4 raaste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 reals growth par paiye ek coupon.
3: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
2: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra coupon or mega draw ticket.
4: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
5: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
4: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
7: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। चलिए यहाँ पे बात करते हैं फिटनेस के बारे में, शुरू करते हैं। फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो हिट है। में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। एज बढ़ने के साथ साथ बैलेंस एक्सरसाइज और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, बैलेंस, मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन नेचुरली थोड़े कम होने लग जाते हैं। अगर इन्हें रेगुलरली ट्रेन नहीं किया तो फिर गिरने का रिस्क जो है बढ़ सकता है। बैलेंस एक्सरसाइजेस जो है ब्रेन, इनर ईयर और मसल्स के बीच के कोऑर्डिनेशन को जो बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकती है, और रेगुलर प्रैक्टिस से बॉडी स्टेबिलिटी हमारी अच्छी हो जाएगी, रिएक्शन टाइम इंप्रूव हो जाएगा, वॉकिंग और डेली मूवमेंट्स जो है ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील होने लग जाएंगे, और उसके साथ साथ गिरने के साथ जो इंजरीज होते हैं उसका रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब क्या क्या सिंपल एक्टिविटीज हम कर सकते हैं? एक पैर पे खड़े होना इज लाइक वेरी ड थिंग, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बेसिक बैलेंस एक्सरसाइज है। हील टू टो वॉक, और कुछ लोग ताई ची भी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक चीज़ है। उसके साथ साथ बैलेंस फोकस्ड एक्सरसाइजेस जो हैं वो भी हम कर सकते हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। और रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि बैलेंस ट्रेनिंग सिर्फ ओल्डर एडल्ट्स के लिए ही नहीं बल्कि हर एज ग्रुप के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बेटर बैलेंस जो है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो उसे इम्प्रूव कर सकता है, पोस्चर को इम्प्रूव कर सकता है और कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव कर सकता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि बैलेंस भी स्ट्रेंथ की तरह एक ट्रेनेबल स्किल है। रेगुलर बैलेंस एक्सरसाइजेस एज के साथ मोबिलिटी, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ring for the newly married, cute little bangle for the newborn? Arre yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. To phir Malabar Gold and Diamonds, golden summer ke saath, buy your free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. Download it today.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने टैलेंटेड एथलीट्स के लिए एक नया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, जिससे वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का एम जो है वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करना जो पढ़ाई में भी अच्छे हों और स्पोर्ट्स में कतर को इंटरनेशनल स्टेज में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ और कतर ओलंपिक कमेटी से जो है नॉमिनेशन लेना होगा, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया मीट करना होगा और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर भी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ एलिजिबल स्टूडेंट्स को ट्यूशन फी सपोर्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट भी मिलेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज के सेकेंड एडमिशन फेज के लिए एप्लीकेशन जो है 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्ट की जाएंगी। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस
0: जीतने के चार रास्ते पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन
1: दूसरा अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है
0: तीसरा नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है यहां हर चोट एक मेडल है हारना मना है और डरना गुनाह है यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन
3: इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन
2: FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
4: इन एसोसिएशन विद
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
5: आल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi guys, this is Abhar Shetty Khurana, and you are listening to Radio Olive.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात app and experience faster consultations. Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. स्टेशन क्लॉक में 8:18 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर.
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर.
2: In association with...
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
3: Your trusted remittance partner.
0: और चलिए अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में. क्वार्टर फाइनल जो आज से शुरू हो रहे हैं और पहला क्वार्टर फाइनल मैच है फ्रांस वर्सेस मोरक्को जो 11 बजे होने वाला है. और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है क्योंकि देखिए दोनों टीम काफ़ी तगड़ी टीम है. फ्रांस भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, मोरक्को भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है. एक इजी कंपटीशन तो होने वाला है नहीं दोनों टीमों के लिए, काफ़ी टफ कंपटीशन ही रहेगा. हमें ये देखना है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा पिच में. ऑन पेपर देखिए तो दोनों टीम काफ़ी अच्छी है. फ्रांस का अटैकिंग भी काफ़ी बढ़िया है और मोरक्को भी कम नहीं है. ठीक है, मोरक्को ने साबित कर दिया अपने आप को कि भाई हल्के में नहीं लेना हमें, तगड़े हैं हम भी करके. और उसके साथ साथ कल के मैच के बारे में भी हम बात करेंगे जो होने वाला है, जो सेकंड क्वार्टर फाइनल है. अभी फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पे जरा आगे बढ़ते हैं, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हुए और कहते हैं जियो बिंदास.
5: कूल सॉन्ग
6: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
7: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 8:30 होने वाले हैं और यहां पे हम बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: तो भाई मैच के बारे में बात करते हैं जो कल होने वाला है, दूसरा क्वार्टर फाइनल जो होगा स्पेन और बेल्जियम के बीच में। अब स्पेन और बेल्जियम के बीच का जो एक मुकाबला है वो कल परसों से शुरू नहीं हुआ भाई, 100 साल से ज्यादा लेगेसी है इस एक छोटी सी राइवलरी की। ठीक है, इसे एक बहुत ही ऑफिशियल या फिर फुल फ्लेज राइवलरी हम बोल नहीं सकते, मगर कई बार जो है ये दोनों टीम आमने सामने आए हैं और सबसे पहला मैच इन्होंने खेला था इंटरनेशनल स्टेज में 1921 में, उसमें जो है स्पेन जीत गई थी। उसके बाद से मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेन ने ही जो है अपना पलड़ा भारी रखा है, मगर 1986 के वर्ल्ड कप में पहली बार ये दोनों वर्ल्ड कप में आमने सामने आए और जहाँ पे बेल्जियम के पहले गोल्डन जनरेशन ने स्पेन को 1-1 के ड्रॉ में पकड़ लिया और पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से जीत के वो आगे बढ़ गए थे। अगर हम टोटल मैचेस का लिस्ट देखें तो स्पेन और बेल्जियम के बीच में 22 बार मैच हुआ है जिसमें स्पेन ने 12 बार मैचेस को जीता है, ड्रॉ 5 बार हुआ है और बेल्जियम ने 5 बार जो है मैच को जीता है। और वर्ल्ड कप के इसमें देखे तो भी ड्रॉ हुआ है बट थ्रू पेनल्टी बेल्जियम आगे गई है। एंड नेक्स्ट इसमें उसके बाद जब वो मिले थे वो ग्रुप स्टेज में था, ग्रुप स्टेज में ड्रॉ हुआ था और देखते हैं इस बार क्या होता है, किस तरीके से जो है स्पेन और बेल्जियम एक साथ आते हैं और कौन जादू दिखाता है पिच में, कौन बढ़िया खेलता है पिच में, क्योंकि बेल्जियम के भी काफ़ी टॉप प्लेयर्स का जो है लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, लास्ट डांस होने वाला है। तो लेट्स सी आप किसको सपोर्ट करते हैं, बेल्जियम या स्पेन, जो ये मैच जो है कल होने वाला है। मगर आज जो मैच होगा वो होगा फ्रांस और मोरक्को, उसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा। फ्रांस और मोरक्को के बीच में आपके प्रेडिक्शंस क्या है, कौन जीतेगा फ्रांस या फिर मोरक्को, मैसेज कीजिए मुझे 3311063 पर। फिलहाल यहाँ पे पटियाला हाउस का एक बहुत ही बढ़िया गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: looking for the newly married cute little bangle for the newborn? Arre yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. To phir Malabar Gold and Diamonds, golden summer ke saath, buy your free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
2: इन एसोसिएशन विद।
1: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
1: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात app and experience faster consultations. Download it today.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई वीकेंड आ चुका है, धीरे धीरे चिल करने का वक्त आ रहा है। बस आज का दिन भी ऑफिस में थोड़ा स्पेंड करना है, फिर तो जीने के है दो दिन ना ना ना ना ना, क्योंकि लाइफ तो हम वीकेंड में ही जीते हैं ना, है ना। बाकी जिंदगी तो हम बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए बताते हैं वीकेंड में एंजॉय करने के लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जहां पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई 31 अगस्त तक आप कुछ चीजें चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उनमें से एक है मंडे मैडनेस, जो डेजर्ट फॉल्स वाटर एंड एडवेंचर पार्क में है। वहां पे जाके आप जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने वीकेंड में चिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कतर टॉय फेस्टिवल के बारे में। देखिए बहुत ही धूमधाम से टॉय फेस्टिवल चल रहा है और 31 जुलाई तक जो है चलेगा, DECC में होने वाला है। वीकडेज का जो इसका टाइमिंग है वो होता है 2 बजे से लेकर 10 बजे तक। वीकेंड में इसकी टाइमिंग जो है वो है दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। तो आप जरूर इसके वेबसाइट में जा सकते हैं, टिकट्स चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट समर कैंप्स भी चल रहे हैं, जहां पे आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए। और इसके साथ एक चीज जो बहुत बढ़िया चल रही है अभी, वो है पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन, जो आज से शुरू हो रहा है ईस्टर्न स्क्वायर सूक वाकिफ में। और एक एयर कंडीशन वेन्यू है भाई, और आम के मजे लेने का एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आया है। तो इंतजार किस बात का है जानी, आज शाम को आप जा सकते हैं। डेली जो है 4 PM to 10 PM के बीच में जो है ये रहेगा, मगर आज 9 जुलाई है, आज ओपनिंग डे है, तो 6 PM to 10 PM होगा। फ्री एंट्री है, जाइए एंजॉय कीजिए, आम खरीदिए और बढ़िया तरीके से आम खाइए, आम के लुत्फ उठाइए। फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। Radio on

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात एप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे मैं बैठ के ना ऐसे ही थोड़ा रील स्क्रॉल कर रहा था और एक बहुत ही प्यारा रील आया। देखिए मैं बता दूं आपको, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जावेद अख्तर साहब का कोई रील आता है ना तो उसे स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मस्त बातें जो हैं वो करते हैं और उनकी बात सुनने में बहुत मजा भी आता है। तो उन्होंने इस रील में जो मैंने देखा था उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बात की थी। उन्होंने बोला था कि भाई जैसे एक गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं ना, वो स्मूथ रोड के लिए नहीं बने हैं, वो उन रोडों के लिए बने हैं जहाँ पे गड्ढे होते हैं, पत्थर होते हैं, अनइवन सर्फेसेस होते हैं, वहाँ पे आपकी गाड़ी का शॉक अब्जॉर्बर जो है बहुत अच्छे से काम आता है। और उन्होंने बोला कि

0: Short Break. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और मैं बता रहा था जावेद साहब ने सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में एक बात बताई थी। सिमिलरली उन्होंने इंसल्ट के बारे में एक और बात बताई थी। उन्होंने बोला था कि यार जब हमारे स्ट्रगल के दिन चलते हैं ना, जब खाना ढंग से नहीं मिलता, रहने को जगह नहीं मिलती, तो हमें लगता है कि यार लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। मगर जब चीज़ें मिल जाती हैं हमें, खाना अच्छा मिल जाता है, बिस्तर अच्छा मिल जाता है, रहने के लिए घर अच्छा मिल जाता है, तो हम ये डिफ़िकल्टीज भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि हमें उस टाइम पे खाना नहीं मिलता था। हम वो सोच के ज़्यादा दुखी नहीं होते फिर कि अरे यार उस टाइम पे तो खाना नहीं मिलता था, कितना बुरा हुआ मेरे साथ। मगर किसी का बोला हुआ एक बुरा शब्द हमारे दिल में रह जाता है। और उन्होंने एंड में एक बात बोली थी, अगर एक अच्छा शब्द बोलो तो बहुत अच्छा, और बुरे शब्द से बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो सिंपल सी बात यही है कि अच्छे शब्द से अच्छा कुछ है नहीं और बुरे शब्द से बुरा कुछ है नहीं। और हमेशा इंसान के मन में अगर आपने किसी को इंसल्ट किया है तो उसका घाव रहता है, अगर आपको किसी ने इंसल्ट किया तो उसका घाव रहता है। इसलिए काइंड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। हम ऐसे बहुत रूड हो जाते हैं आजकल के ज़माने में, हसल कल्चर के इस ज़माने में, भाग दौड़ के ज़माने में हम भूल जाते हैं कि इंसान है, इंसानियत होनी चाहिए। मगर हम तो बस बता सकते हैं, अब यही बात बताते हैं। हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस श्योर इन GCC। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यार मैं जब ट्रिवेंड्रम में रहता था तो जहाँ पे मैं रहता था, जिस घर में मैं रेंट में रहता था, वहाँ की जो दीदी थी, ठीक है, जो लैंड लेडी थी, वो हर दिन सुबह दौड़ने जाती थी। तो एक दिन मैं भी थोड़ा जोश में आके दौड़ने गया तो मैंने देखा कि उनका ना पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, पूरे ग्रुप सेटिंग में टीम बना के ये लोग दौड़ते हैं। और इनको ऐसे होता है कि चलो भाई आज ये इस जगह पे जाके दौड़ कर आते हैं या फिर आज इतना किलोमीटर दौड़ के आते हैं। तो मतलब पहले एक बेसलाइन फिटनेस लेवल बिल्ड करते हैं, उसके बाद ही वो लोग ऐसे चैलेंजेस लेते हैं। मगर ये मुझे काफी अच्छा लगा, एक कलेक्टिव बना के दौड़ना, एक ऐसा सेशन रखना जिसमें ये सब एक साथ आते हैं, दौड़ते हैं। तो देखिए, एक तो दौड़ने से बहुत अच्छा लगता है, एक्सरसाइज हो रहा है, ये सब चल रहा है, मगर जब हम अपने खास लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब एक साथ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हम और अच्छा फील करते हैं, और बेहतर फील करते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है यहाँ पे, मॉर्निंग जॉगिंग सेशन जो दोहा फेस्टिवल सिटी में हो रहा है। तो एक एक्साइटिंग इंडोर 5 किलोमीटर रन जो है आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, आपको बस रजिस्टर करना है। आप उनके वेबसाइट पर जा सकते हैं, सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक ये जो है चलेगा मॉर्निंग जॉगिंग सेशन जो है, 31 अगस्त तक ये चीज चलेगी। तो बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से इसका हिस्सा बन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने सेहत पर ध्यान दे सकते हैं। और यही बोलते हैं हम भी, जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: छोटा एड ब्रेक दिखाई दे रहे हैं
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक
0: अला जादू
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस
2: जीतने के चार रास्ते पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन
3: दूसरा अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है
2: तीसरा नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर ये एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
5: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पे कशिश पहुंच जाएगी और आपके साथ गुफ्तगू करेगी। तो जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार कशिश को दीजिएगा। और जाते जाते जाते आपसे हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि यार कभी कभी लाइफ में पिवट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी लाइफ में एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें बहुत मुश्किल लगता है चेंज को एक्सेप्ट करना, चेंज को एक्नॉलेज करना, चेंज के साथ आगे बढ़ना। मगर लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि एवरीथिंग चेंजेस। वो कहते हैं ना कि संसार का सबसे बड़ा सत्य ही परिवर्तन है। तो परिवर्तन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मेंटली भी हम थोड़ा अच्छा फील करेंगे, साथ ही साथ हमारे लाइफ में चेंजेस और अच्छे अच्छे आते रहेंगे। तो ये एक एक्सेप्टेंस जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात बताते हुए मैं जरा निकलता हूँ आपसे, एक नई टाइमिंग में मैं आपसे बात करूंगा, आपके साथ गुफ्तगू करूंगा और मिलते हैं हम फिर से। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग अपना दिन स्पेंड कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम तक जो है बिंदास मॉर्निंग में मैं आया। पिछले साल दिसंबर से मैंने बिंदास मॉर्निंग का जो जर्नी है अपना शुरू किया था, एंड फाइनली बिंदास मॉर्निंग को टाटा बाबाई करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मैं एक नए टाइम में आऊँगा। और यही प्यार जो आपने मुझे दिया है अब तक, वही प्यार बिल्कुल मुझे देते रहिएगा। अपने दिल में ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और थैंक यू सो मच बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और इस दिन को बढ़िया तरीके से स्पेंड करना याद दिलाते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

मम्मी पापा की शादी की वीडियो की याद आ गई है। यही गाना पूरी शादी के बैकग्राउंड में था एंड सच में मुझे जो है इस मूवी को देख मतलब ये जो गाना है इसको सुनने के बाद शाहरुख खान की नहीं मेरे पापा की याद आती है यार। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइव मजा लेकर आ गई हूँ। देखिए अगर मेरी आवाज में आपको थोड़ा भी दर्द जो है वो सुनाई दे रहा है तो बिल्कुल मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जब आप बहुत टाइम से एक्सरसाइज ना करो और फिर आप एक दिन उठ के डिसाइड करो कि यार आज तो ना एकदम बढ़िया वाला वर्कआउट ही कर लेंगे तो

3311063। ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मैसेज कर दीजिए कि आखिर आपका वीकेंड जो है किस तरीके से आपने प्लान कर रखा है और क्या कुछ खास आप करने वाले हैं, वैसे क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगी लेकिन थोड़ी सी देर में। फिलहाल मजा आ रहा है ये कहते हुए, क्यों मजा आ रहा है ये वाला गाना सुन लेते। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए आपकी कशिश के साथ जियो बिंदास।

0: Radio Olive 106.3 FM. Gio
1: Bindas. Time check. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12, दैट इज 10:12. सो स्टे ट्यून्ड रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Hi, this is Air Rahman.
7: Air Rahman.
6: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive. G.

0: टेक्निकली अगर देखा जाए तो श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की फर्स्ट यानी डेब्यू मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड वक्त हो गया है आपको थोड़ा मौसम का मामला जो है वो समझाने का कि आखिर टेम्परेचर कितना हो रहा है एंड कितनी तेज हवा जो है वो चलने वाली है। सो इस वक्त दोहा में करंट टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस, आज का हाइएस्ट टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। हवा जो है वो एकदम तेजी से बहने वाली है, सो आपको जो है अपने बालों को भी बांध के चलना है एंड सनस्क्रीन तो देखो लगाना ही है। अगर मैं बताऊं तो 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो है वो हवा बहने वाली है आज। इतने की तो स्पीड में मैं जो है इंडिया में अपनी गाड़ी नहीं चलाती थी देखो। वैसे देखिए हीट को बीच करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज तो होनी चाहिए कूल सी, सो इसीलिए आपके लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर लेकर आ गई हूँ। सो ये गाना आप इंजॉय कीजिए, बाकी आने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि जुलाई में ऐसी कौन सी मूवीज हैं जिनके रिलीज होने का हम इंतजार कर रहे हैं या कंटेंट के बेसिस पे क्या कुछ नया हमें देखने को मिलने वाला है। कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आर आपकी रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

मौसम ये औसम बड़ा, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ गानों में ही कह सकते हैं, क्योंकि असल में तो हम कह नहीं पा रहे हैं। इतनी गरम गरम थपाड़े पड़ रहे हैं ना हवाओं के। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसोसन। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, एंड वादे के अनुसार आपको ये बताने वाली हूँ कि जुलाई में ऐसी कौन कौन सी मूवीज हैं जो रिलीज होने वाली हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए यार, अरशद वारसी इज किलिंग इट। मतलब पहले जो है प्रीतम पेड्रो में हमने उन्हें बहुत सारा प्यार दिया, उसके बाद वेलकम टू द जंगल में भी अच्छा रोल किया है, एंड अब हमें जो है वो धमाल 4 में दिखने वाले हैं। ऑफकोर्स द आइकॉनिक जोड़ी आदियन मानव की हमें देखने को मिलेगी। सो धमाल 4 जिसके गाने धीरे धीरे लॉन्च हो रहे हैं, गुलाबी साड़ी का जो रिक्रिएटेड वर्जन है वो तो मेरी प्लेलिस्ट में जगह बना चुका है। इसके बाद जो है आपको देखने मिलेगी इक्का भी। सो इक्का जो है वो 9 जुलाई को रिलीज हो रही है, 10 जुलाई को धमाल 4 रिलीज हो रही है, और 23rd ऑफ जुलाई को उत्तर द पुत्र जो है अनु कपूर जी की एक मूवी है वो रिलीज हो रही है। भाई तेरा स्टार है मूवी जो है वो 29th ऑफ जुलाई को रिलीज हो रही है, एंड ऐसी ही और भी कुछ मूवीज हैं जैसे ओ माय तेरा यार हूँ मैं जो है ये भी रिलीज हो रही है, एंड ऐसी एक दो मूवीज हैं। कुछ मूवीज मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी वर्थ टॉकिंग है या इसका कंटेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको देखनी चाहिए, बट हम जज नहीं कर सकते। प्रीतम एंड पेड्रो भी जो है सिर्फ राजू रानी की मूवी थी इसीलिए पहले से बहुत ओवर हाइप थी, वरना कॉन्टेंट जो है वो देखने के बाद ही समझ आया कि हाँ ये मूवी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो फिलहाल तेरा मेरा रिश्ता पुराना ये जो गाना है ये आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए। बाकी मुलाकात जो है थोड़ी सी देर में होगी, आपको स्ट्रेस से लड़ने का एक फैंटास्टिक वाला जो तरीका है वो मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून रहिए, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: यार आपको ना मैं स्ट्रेस से डील करने के तरीके तो हर रोज बता देती हूँ, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप पता कैसे लगा सकते हैं कि स्ट्रेस आखिर किस बात का है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखिए, लाइफ तो असल में तब मस्त होती है जब लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हमें पता होती हैं कि हमें आखिर डील करना किस चीज़ से है, वरना आधा स्ट्रेस तो इसी बात का है कि अब मुझे स्ट्रेस किस बात का है। एक रिसर्च जो है वो ये कहती है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम पता है एंड आप उस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल सकते हैं, अगली बार आपको किसी भी बात का स्ट्रेस हो या आप कन्फ्यूज हो कि आपको स्ट्रेस किस बात का है, तो बस आपको जो है अपनी डायरी उठानी है, पेन लेना है और अपनी प्रॉब्लम लाइन बाय लाइन कि आपको फील कैसे हो रहा है या किसी के बारे में आपको क्यों गुस्सा आ रहा है वो बस लाइन बाय लाइन लिखना है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं यानी आप उस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल सकते हैं। बस आपकी एक प्रॉब्लम यानी बोरियत, उसका सलूशन मैं निकाल देती हूँ। अमेजिंग वाले गाने आपके रेडियो सेट्स पर आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए आपकी कसूस के साथ जियो बिंदास।
1: Radio

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM
1: बिंदास मधुर नैनी नार अलबेली।

0: सुख वाकिफ अलखोल।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:09 यानी 11:09। स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
0: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर। सुक वाकिफ अलखोल।
2: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
3: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क, Qatar's number one Asian radio network.

0: देखिए, हमको तो आपसे प्यार हुआ है, लेकिन जीना जो है वो दुश्वार नहीं हुआ है। आप जैसे जो है प्यारे प्यारे दोस्त हो, लिसनर्स हो, तो जीना दुश्वार किसका ही हो सकता है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड वक्त हो गया है आपको एक मूवी रिकमेंड करने का। सो ये जो है, जो आज मैं मूवी आपको बताने वाली हूँ, ये एक डार्क कॉमेडी मूवी है और इस मूवी का नाम है एवरीबॉडी लव्स सौरभ हांडा। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा नाम है, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ, एवरीबॉडी लव्स सौरभ हांडा जो है एक डार्क कॉमेडी मूवी है जो आपको Z5 पर जो है मिल जाएगी स्ट्रीम होते हुए। और ये एक मर्डर मिस्ट्री है एंड इसमें जो है बहुत सारे अमेजिंग एक्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे विनय पाठक हो, सौरभ शुक्ला हो, और रियलिस्टिक डायलॉग्स हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार एक मूवी चल रही है। सो इस मूवी में जो है सारे फैमिली वाले जो है वो एक घर में आते हैं रुकने के लिए दूर दूर से, एंड एक फैमिली मेंबर होता है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और उस फैमिली मेंबर के साथ ही कुछ हो जाता है। अब क्राइम जो है वो मूवी है, मिस्ट्री मूवी है, सो क्या होता है धीरे धीरे करके वो आपको पता चलेगा। अगर आपको प्रीतम एंड पेड्रो जो है वो अच्छी लगी है, सो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। सो बिल्कुल एक बार जाकर जरूर देखो। अगर नाम याद नहीं हुआ है तो फिर से मैं बता देती हूँ, मूवी का नाम है एवरीबॉडी लव्स सौरभ हांडा। सो जाकर एक बार जरूर देखना। फिलहाल वक्त हो गया है आपको कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनाने का। सो ये गाना जो है जल्दी से सुन के आओ, ए दिल है मुश्किल मूवी से बुल्लिया गाने का नाम है, और इस गाने में ना ऐसे कुछ उर्दू के वर्ड्स आते हैं जो आप मुझे मैसेज करके समझा सकते हैं कि कशिश इनका मतलब क्या होता है, मतलब इनका मतलब ये होता है। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे कॉल करो, मैसेज करो, और ये बता दो कि यार आखिर इन वर्ड्स का जो इस गाने में यूज हुए हैं इनका मतलब क्या होता है। तो ये गाना एंजॉय करो, मिलते हैं थोड़ी सी देर में।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
1: कूल सॉन्ग।
0: मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

देखो यार, हर चीज की ना अपनी एक लाइफ होती है, हमें सिर्फ उस चीज को उतना ही यूज करना चाहिए जितना यूज करने के लिए वो बनी है, वरना एक टूथब्रश को दो दो तीन साल तक जो है यूज करोगे तो फिर दांत साफ नहीं होंगे बल्कि और खराब होंगे। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसर सन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए, लाइफ मस्त तभी होगी जब आप चीज़ों को उनकी जिस उम्र के लिए वो बने हैं उस उम्र तक ही यूज़ करेंगे। जैसे रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स जो है उनको आपको हर एक दो साल में जो है एक्सपायर करना होता है और नया खरीदना होता है। फ़ोन केसेस की अगर हम बात करें तो कई बार लोग जो है एक फ़ोन केस लेते हैं और उसको लाइफ टाइम यूज़ करते रहते हैं जब तक फ़ोन पुराना नहीं हो जाता, लेकिन 6 से 12 महीने में हमें हमारे फ़ोन को जो है वो बदलना, फ़ोन कवर को जो है वो बदलना चाहिए। अब देखिए, बात फ़ोन कवर की कर रहे हैं तो टेम्पर्ड ग्लास की भी कर लेते हैं। टेम्पर्ड ग्लास जो है आपको 6 से 12 महीनों में बदलना ही चाहिए। अब देखिए, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उनके बारे में बताऊंगी लेकिन थोड़ी सी देर में। तब तक आपको अगर ऐसी कोई चीज़ पता है जिसे हमें जल्दी जल्दी बदलना चाहिए तो 3311063 पर आकर जल्दी से बता दो। फिलहाल जो है एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

सो ब्रेक पे जाने से पहले एन अमेजिंग वाले गाने आपको सुनाने से पहले हम बात कर रहे थे ऐसी चीजों की जिन्हें आपको वक्त पे रिटायर कर देना चाहिए, वरना आपकी हेल्थ धीरे धीरे करके रिटायर होना शुरू हो जाएगी। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड वीकेंड है, आई नो आप सफाई तो करोगी, तो सफाई के चलते कुछ ऐसी चीजें जो आपको रिटायर कर देनी चाहिए उनकी भी जो है सफाई कर देना। सो माउस पैड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर 12 से 18 महीनों में जो है चेंज करना चाहिए। लैपटॉप का जो कीबोर्ड का कवर होता है ना, वो जो सिलिकॉन का कवर आप यूज़ करते हैं, उसे भी आपको 3 से 6 महीनों में बदल देना चाहिए। ईयरबड्स की जो टिप होती है कुशन वाली, वो आपको हर 3 से 6 महीने में रिप्लेस कर देनी चाहिए, वरना आपको ईयर इन्फेक्शन का खतरा है। चार्जिंग केबल 1 से 2 साल में आपको बदलनी चाहिए। वाटर बॉटल्स जो है वो आपको 6 से 12 महीनों में बदल देनी चाहिए। स्क्रीन साफ करने वाला जो कपड़ा है वो भी 3 से 6 महीने आपको चलाना चाहिए। सो यही वो कुछ चीज़ें थी जो आपको जो है वक्त वक्त पर बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही देखो संसार का नियम है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में फैशन वाली बात पे जो है हम चर्चा करने वाले। सो स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास।

क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता है कि जब मन नहीं है तो किस तरीके से ड्रेसिंग की जाए, किस तरीके के कपड़े वीकेंड पे सिर्फ ग्रोसरी लेने अगर आप जा रहे हैं तो पहन के जाया जाए। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए जो है लेकर आ गई हूँ मैं, लाइफ मस्त है। एंड देखिए, जब आपको कुछ नहीं समझ आता है कि क्या बॉटम में पहना जाए, तो उसके लिए एक अलग टाइप की पैंट्स जो है वो फैशन इंडस्ट्री में काफी पहले एंट्री ले चुकी है। पैंट्स को कहते हैं फटीग पैंट। ओरिजिनली जो है इनको OG 107 कहा जाता है, और एक ये यूटिलिटी ट्राउजर्स के नाम से जो है इन्वेंट की गई थी, ताकि ये ड्यूरेबल मिलिट्री इंस्पायर्ड वर्क जो है वो किया जा सके, जैसे नॉर्मली फैक्ट्री में काम करना या फिर नॉर्मल आउटिंग पे जाना, ये उसके लिए इन्वेंट हुई थी। लेकिन उसके बाद इसका जो रेक्टेंगुलर शेप है और पैच वाली पॉकेट्स हैं, उसने इसको बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बना दिया, जिससे जो है लोग इसे जनरली पहनने लगे। अब बल्कि जो है आप कार्गो पैंट्स अगर पहनते हैं तो वो आपको कंफर्टेबल नहीं लगती है, या फिर आप डेनिम जो है इतनी गर्मी में तो आप पहनना ऑफ कोर्स पसंद नहीं करेंगे। सो फटीग पैंट्स जो एक लाइटर फैब्रिक के साथ आती हैं, आपको किसी भी ब्रांड में इजीली मिल जाएंगी, वहां जाकर आप ले सकते हैं। सो फटीग पैंट्स इस वक्त ट्रेंड में चल रही है, बिकॉज जिस हिसाब से गर्मी है, मेरा तो मन नहीं करता यार कि मैं मोटी मोटी डेनिम जीन्स पहनूं। ओके, सो आपको ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर मैसेज करके। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए। मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में।

0: मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: अपना 12th बर्थडे मनाए हुए मुझे जो है 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो है ऐसी फीलिंग आती है कि काश कोई मुझे लाइट वाला झिलमिल वाला गुब्बारा दिला दे तो मजा आ जाए। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्ता लेकर आ गई हूँ। एंड अगर मैंने ये कहा है कि मुझे अपना 12th बर्थडे मनाए हुए 10 साल हो गए और आप कैलकुलेट करने लग गए हैं तो आप हैं असली यू नो मैथ के एक्सपर्ट। तारीफ तो बनती है आपके लिए, वैसे तारीफ तो देखो उन लोगों के लिए भी बनती है जो हर रोज जो है ऑफिस के लिए 2 घंटे पहले उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद अपना आउटफिट जो है वो डिसाइड करते हैं, उसको पूरी तरीके से स्टाइल करते हैं और एक भी दिन जो है अंडर परफॉर्म नहीं करते हैं फैशन के मामले में। हर रोज फैशनिस्टा की तरह ऑफिस पहुंचते हैं और कोई उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे या ना दे आईने के सामने खड़े होकर ये जरूर कहते हैं कि ओ माय गॉड आज तो क्या लग रहे हो तुम। अगर आप ऐसे ही इंसान हैं तो आज का दिन आप ही के लिए है। आज है वर्ल्ड फैशन डे, यानी आज के दिन फैशन को थोड़ा एक्स्ट्रा सेलिब्रेट किया जाता है। सो यार अपने सबसे ज्यादा फैशनेबल दोस्त का नाम जो है वो मुझे मैसेज कर दो 3311063 पर, आज रेडियो पे उनकी तारीफ की जाए कि यार कैसे आप जो है फैशन की यू नो पराकाष्ठा आपने पार कर दी है, फैशन को नया डेफिनेशन दे दिया है। सो आपके फैशनेबल दोस्तों का जो है नाम आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 3311063 पर, मैं जरा उनको थोड़ा सा क्रेडिट देती हूँ यार कि गुड वेरी गुड। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए। मैं जो है आती हूँ जरा अपने फैशन यू नो फ्रेंडली दोस्तों को कॉल करके। चलो चलो तो फिर कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो एंजॉय कर लेते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: ओसम रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है ओसम।

0: 106.3 FM, Gio Bendaz. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

जब आपकी आवाज सुन के कोई ये पहचान जाए कि यार शायद आपकी तबीयत खराब है, तो बस वही आपका असली दोस्त होता है और आप ही लोग तो मेरा असली दोस्त है। मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो है ये कहा है कि कशिश आज आपकी तबीयत खराब लग रही है, टेक केयर। वेलकम बैक 106.3 रेडियो आलू पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। एंड आज जो फैशन डे के अवसर पर हम ये बात कर रहे थे कि आपके वो फैशनेबल दोस्त कौन है जिन्हें आप क्रेडिट देना चाहोगे आपको भी और ज्यादा फैशनेबल बनाने का। सो इम्तियाज अली जी ने लिखा है कि कशिश और कौन, आप ही तो हो वो। बस यही सुनने के लिए तो मैंने क्वेश्चन आप पे जो है छोड़ा था, डाला था। सो आप जो है आज के दिन यानी फैशन डे के दिन अपने फैशन को थोड़ा एक्स्ट्रा सेलिब्रेट कीजिए। ऐसी चीजें जो आपने काफी दिन से अलमारी में बंद करके रखी है कि यार अभी नहीं पहनता, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना, या ये साड़ी रहने देती हूँ, ये ड्रेस रहने देती हूँ, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, उन कपड़ों को निकालिए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस पहन लीजिए। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, तब तक ये अमेजिंग वाला गाना जो है इंजॉय करके आइए। मैं जरा पानी पी के आती हूँ।

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुम सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

चलिए जी, यहाँ से टाटा बाय बाय करके यार जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि वीकेंड भी तो देखो एंजॉय करना है ना, अब क्या करें। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिशन, मेरे साथ आप लाइफ मस्त है शो एंजॉय कर रहे थे, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, कल मुलाकात होगी अपने टेक टॉक वाले शो में, जहाँ टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे लेकिन फन का तड़का मार के। तब तक अगर मेरी याद सताए तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर आप मुझे ढूंढ सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। 3311063 जो है ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर भी अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, एटलीस्ट कोशिश तो देखो करूंगी। और बाकी वही चीज़ें कहूँगी जो हर रोज़ कहती हूँ कि अपना ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, और साथ में हाइड्रेशन का ध्यान रखना, अपने साथ साथ अपनी स्किन का भी, सो सनस्क्रीन भी लगाते रहना है। बाकी मुझे याद रखना और मेरे लिए दुआ करते रहना, मिस करते रहना। टाटा बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, एंड रेडियो ऑलिव के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: just a game. It's an emotion.
1: It's not just a game. It's an emotion.
2: It's an emotion.
1: It's an emotion.
0: FIFA ki har detail ke liye sunye Radio Olive.
3: In association with...
0: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
0: Your trusted remittance partner.
5: नमस्कार मैं हूँ गुलराज सिंह
6: गुलराज सिंह
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
6: जियो बिंदास
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Olive Music Marathon. एक घंटा non-stop back to back गाने।

0: रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: करण औजला की आवाज में फॉर रीजन ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM दिनेश आगे जी आपके साथ ऑलिवरी चार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान। थर्सडे का दिन जुलाई 9th, खुशियां ही खुशियां क्योंकि वीकेंड इज हियर मेरी जान ऑब्वियसली। एंड जानना चाहूंगी सबसे पहले कि कैसा रहा आपका अब तक का दिन। अगले 3 घंटे तो सेट है, बहुत सारी हमने बातें करनी है और यू नो बहुत कमाल कमाल के गाने सुनने हैं, जैसे कि ये रिसेंटली मैंने ये मूवी दोबारा से देखी नेटफ्लिक्स पे, मजा आया यार मुझे, पर करीना कपूर ने क्या ओवर एक्टिंग की है यार। थोड़ा नॉस्टैल्जिया का तड़का और साथ में ये खूबसूरत गाना।
1: श्री श्री तपती रातों में जलता हूँ मैं बरसातों में,
0: अब इतनी वैरायटी है तो उसमें से एक इंस्टा फेवरेट भी तो बनता है ना। हाँ जी साड़ी भी सुनाएंगे, आपकी भी सुनेंगे, तो फटाफट से आ जाइए 3311 1063 पर मैसेज कीजिए, बताइए क्या हाल चाल है, हाउ हैज द डे बीन सो फार, व्हाट्स द मूड फॉर दिस थर्सडे। यू कैन आल्सो कॉल 4444 1063 पर। स्टे ट्यून्ड एंड जुबिन दास मेरी जान।

0: शिवम पाठक की आवाज में बहुत ही सुंदर गाना पद्मावत मूवी से एक दिल एक जा ओले ऑल रेडियो ऑल ओवर 6.3 एफएम तनीषा ऐप के साथ ऑल ओवर रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाली हूँ जो कि हमें वीकेंड पर तो अमल करनी है और उसके आगे प्रैक्टिस करते रहनी है लाइफ में ठीक है विच इज जो होगा देखा जाएगा एक्सप्रेस विल टेक यू फ्रॉम ओवर थिंकिंग पुर टू सुकून पुर रियल क्विक एग्जैक्टली हमारी ओवर थिंकिंग कहाँ से शुरू होती है कि यार ये हो गया तो वह ऐसा हो जाएगा वो नहीं किया तो वो नहीं होगा यू नो ऑल दोज फेक इमेजिनरी सिनेरियोज जो हम अपने दिमाग में बनाते रहते हैं जो एक्चुअली होने भी वाले कि नहीं उसका पता नहीं है और देर इज अ स्टडी विच सेज कि जो भी चीज़ें हम अपने से दिमाग में इमेजिन कर रहे होते हैं ना सिनेरियोज कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा 90% ऑफ द टाइम्स वो होते नहीं है 10% कभी कभार कुछ रिलेटेबल चीज़ें हो भी जाती है बट जब होती हैं तो पता चलता है कि इतनी बड़ी बात तो थी नहीं जितना स्ट्रेस ले लिया जीवन में है तो क्यों क्यों अपने सुकून को खुद से दूर कर रहे हो थोड़ा कम ओवरथिंक करो जो होगा देखा जाएगा कि साथ चलो और आज में जियो सब बढ़िया होगा मेरी जान सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू स्टे ट्यून ऑन रेडियो बिंदास कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
1: क्या बात है सर क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग
2: हनी व्हेन आर यू कमिंग
3: आई एम कमिंग बेबी आई एम ऑन माय वे होम

0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM पर Jio Bindas. Olive Recharge.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.

0: Alicia.
1: कविता कृष्णमूर्ति और सुब्रमण्यम की आवाज में बोले चूड़ियां बोले कंगना, ये गाएंगी वो जब आप जाएंगे मलाबार गोल्डन डायमंड्स और लेकर आएंगे उनके लिए कमाल का तोहफा। केत्री जी से आपने ये गाना सुना तनिषा के साथ, आप रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम पर ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और मलाबार गोल्डन डायमंड्स पे चल रहा है एक बहुत ही कमाल का समर ऑफर, जिसमें अगर आप कोई भी डायमंड या फिर प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदते हैं मलाबार गोल्डन डायमंड से तो यू विल गेट फ्री कैश वाउचर। इतना ही नहीं, देयर इज मोर मेरी जान। यस, इफ यू वर प्लानिंग कि यार पुराना गोल्ड रखा हुआ है इसे एक्सचेंज करवाना है, पर स्ट्रेस होता है कि यू नो रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए, तो उसका बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है क्योंकि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स हैज टेकन केयर ऑफ इट। यू कैन गो एंड एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी जो कि कहीं से भी खरीदी हो और वो भी बिना किसी लॉस के। हाँ जी, तो देरी किस बात की है, फटाफट से जाओ चेकआउट करो उनका ब्यूटीफुल कलेक्शन और अपनी उनके लिए या फिर मम्मा के लिए या फिर सिस्टर के लिए और यू नो फॉर एनीबॉडी यू वांट टू बाय यू कैन गो एंड बाय सम रियली अमेजिंग कलेक्शन इज ओवर देयर। चेकआउट कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
2: लगा और हो जा रिचार्ज.
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास.
2: ऑलिव रिचार्ज.
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: Tanisha.
1: हर्ष रसगी आवाज में सादी सुन ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा के साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और कतर ने लॉन्च कर दिया है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट एथलीट्स। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखा था फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द स्पोर्ट्स ट्रैक ऑफ द गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये जो मीटिंग है ये इसने सपोर्ट किया मिनिस्ट्री के एफर्ट्स को टू अट्रैक्ट एंड डेवलप नेशनल स्पोर्टिंग टैलेंट हेल्पिंग स्टूडेंट्स कंबाइन स्टडीज विद एथलेटिक ग्रोथ। एंड that is such an amazing initiative because अगर किसी को interest है और you know आप एक early age से ही उन्हें उस चीज़ में involve कर दें तो बहुत आसान हो जाता है उनके लिए उसमें excel करना। and अगर gifted है तो भाई उसको थोड़ा सा और तराशना तो बनता है, है ना। और sports और कतर का जो beautiful रिश्ता है उसको आगे ले जाने के लिए हमारा youth ही तो है। so that's a really cool initiative, if anyone is interested do check it out। और फिलहाल फ्रेश सॉन्ग चेकआउट करो, स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर।
3: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Nasim Medical Center, Al-Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Dr. Onair, brought to you by Nasim Healthcare.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive Recharge.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Only laga aur ho ja recharge. Only recharge.
0: Only recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by।
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: Shah.
1: So I'm Chakrabarti ki awaaz mein Life in a Metro se in the row. Beautiful track only on Radio All 106.3 FM. Dinesha aapke saath All Every Chart chal raha hai yahan par. And in case any of you were looking for a job, there are so many opportunities open right now at Gulfar Misnad. Aur walk-in interviews hain. Aap ja sakte hain 10th of July, that is tomorrow Friday ko subah 9 se dopahar 2 baje tak. Main bata deti hu kaun-kaun si positions available hain. कोटिंग इंस्पेक्टर के लिए पोजीशन है, कोटिंग कोऑर्डिनेटर, स्कैफोल्डिंग कोऑर्डिनेटर, कोटिंग एरिया कोऑर्डिनेटर, जूनियर सुपरवाइजर, स्कैफोल्डिंग एरिया कोऑर्डिनेटर, जूनियर सुपरवाइजर और सीनियर फोरमैन स्कैफोल्डिंग, लीड कोऑर्डिनेटर, परमिट होल्डर्स, सैंड ब्लास्टर्स, स्प्रे पेंटर्स, ब्रश पेंटर्स, स्कैफोल्डर्स, इन सब के लिए वैकेंसीज है वहां पर. अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे फटाफट से मैसेज कीजिए 3311063 पर. आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू सो दैट आपको पता चल सके कि क्या वैकेंसीज है, वेदर इट इज सुटेबल फॉर यू और नॉट, या फिर कोई आपके आसपास हो जो जॉब ढूंढ रहे हो आप उन्हें भी बता सकते हैं. 3311063 पर मैसेज कर दो और सुनते रहो रेडियो ऑल अप जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

Kamal Khan gave us a beautiful track, Awaaz, from the movie Kismat, only on Radio Olive 106.3 FM. Dinesha, aapke saath Olive Recharge chal rahe hain yahan par, and bahut hi crazy inventions ho jaate hain kuch kuch to. Matlab, they say ki, you know, necessity is the mother of invention, but there are few things jinki zarurat nahin hai. Like yesterday I was doom scrolling and I came across a reel jisme wo ek product ko advertise kar rahe the, aur wo product kya tha, cookie catcher. So basically jab hum chai pee rahe hote hain ya fir, you know, we are having milk aur uske sath mein koi cookies ya fir biscuit le rahe hain, and jab hum usko dunk karte hain uske andar, to kai baar zyada der ke liye chhod dete hain aur fir wo soggy hoke usi mein toot ke gir jata hai. I know it is very annoying, but aap bahut der tak mat rakho, तो इतना सौगी होके इतनी जल्दी से नहीं गिरेगा. नहीं, उसके लिए ना एक नेट सा छोटा सा कप काइंड ऑफ बना दिया है, एंड यू जस्ट पुट दैट इन योर कप जिसके अंदर ऑलरेडी चाय और मिल्क और वट एवर इज देयर, आप उसके अंदर उस नेट को डालेंगे एंड देन यू डंक योर कुकी, और अगर वो ऐसे टूट के उसमें गिर गई तो वो उस नेट में गिरेगी, सो दैट आप उसको निकाल के बाद में खा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल नॉट पुट एनी सच थिंग इन माई टी कप जिसके अंदर ऑलरेडी चाय है, दैट इज हॉरिफाइंग. एंड सेकेंडली, इस चीज की जरूरत तो नहीं है हमें, क्या मतलब, do you think it is important or it is necessary for us to have something called cookie catcher? Would you use that? Batao mujhe 3311106 3 par aur sundra radio all of Jio Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

तनीषा के साथ आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम पर ऑल एवरी चार्ज चल रहा है यहाँ पर. एंड 17th ऑफ जुलाई को होने वाला है फ्री कार्डियोलॉजी मेडिकल कैंप एट नसीम हेल्थ केयर. यस एंड बहुत सारी सर्विसेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन, ब्लड प्रेशर चेकअप, रैंडम ब्लड शुगर, जीपी कंसल्टेशन, बॉडी मास इंडेक्स एंड रैंडम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, और साथ में ECG की भी सर्विसेज हैं. तो आप अपना स्लॉट फटाफट से बुक कर लीजिए. देखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना भी बहुत ज़रूरी है. तो इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाएं. 17th ऑफ जुलाई को ही होने वाला है, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, नसीम मेडिकल सेंटर वकरा में. एंड यू कैन बुक योर स्लॉट बाय गोइंग ऑन देयर वेबसाइट. और अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान. समझ रहे हो बात को? स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

0: Tanisha.
1: Darshan Ravalar, Jonita Gandhi ke awaz mein Preet Ray only on Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath only recharge chal rahe hain yahan par aur waqt aa chuka hai.
2: Lame jams.
1: का आज का जो मेरा सवाल है lame jams का वो ये है कि एक ऐसे फ्रूट का नाम आपने मुझे बताना है जिसे खा के एस्ट्रोनॉट्स मून पे चले जाते हैं. जी हाँ, एक ऐसा फ्रूट जिसे खा के एस्ट्रोनॉट्स मून पे चले जाते हैं उसका नाम आपने मुझे बताना है. 3311 1063 पर मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. फिलहाल भेज रही हूँ कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. स्टे ट्यून एंड रियो बिंदास मेरी जान.
0: कूल सॉन्ग
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
4: बात है सर, क्या पर ये बात है.
0: Cool song.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: Alkai ke saath CNG ho ya fuel type buses 64 seater ya compact 26 seater paiye behtar mileage aur maximum comfort Carmel Group ke saath ab safar without suffer visit Carmel Group now
2: Olive laga aur ho ja recharge
0: Olive recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
2: Olive recharge
3: This hour is brought to you by
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

0: love ishq babua
1: Tanisha Tanisha
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Tanisha ke sath hain aap Olive Recharge chal rahe hain par
3: Lame Gems
2: ka aaj ka mera sawal tha ki aisa kaun sa fruit hai jise kha kar astronauts मून पर चले जाते हैं एंड आई गॉट अ वेरी फ्यू आंसर्स हियर उसमें से भी कुछ गलत हैं तो एक और मौका देना चाहूंगी मैं आपको जरा सोचे विचार करें लेम सवाल का लेम जवाब ढूंढ के लाइएगा ठीक है ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसे खाकर एस्ट्रोनॉट्स मून पर चले जाते हैं जी उसके फ्रूट के नाम में ही मून आता है अब इससे ज्यादा क्या हिंट दूं अभी सीजन भी चल रहा है उसका सोचो जरा बताओ 3311063 पर या फिर व्हाट्सएप कॉल कर दो ये व्हाट्सएप का नंबर ही बताया था मैंने कॉल कर दो 4441063 पर और फिलहाल सुनते हैं आई हेट यू लाइक आई लव यू स्टे ट्यून्ड एंड यू विद अस

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

What a beautiful mashup. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath. All every job chal raha hai abhi aur maine lame jams mein sawal pucha tha ki ek aise fruit ka naam batana hai jise kha ke astronauts moon pe chale rehte hain. To maine hint bhi de di thi ki jo fruit hai usme moon aata hai word and right now it's the season for that fruit. Aur nahi aa paya bahut logo ko, matlab mujhe bahut kam sahi jawab aaye hain and the correct answer is jamun. Yes, baki jo logic mein lage hue the nahi yaar, maine bola tha it is lame, to please lame hi sochiye. एंड वक्त हो गया मेरे जाने का और वीकेंड आ गया है, तो एंजॉय कीजिएगा बढ़िया तरीके से. किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, काम वाम का स्ट्रेस ना हम वीक में लेंगे, ठीक है. वीकेंड आया है, एंजॉय करना है एकदम, यू नो, जो भी आपने प्लान किया है, फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस, जिसके भी साथ वक्त बिताना है बताइए, क्लीनिंग, लॉन्ड्री एंड ऑल दोज थिंग्स, जो भी करना है सब आराम से करने का है. स्ट्रेस किसी चीज़ का नहीं लेना है और अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है मेरी जान. इसकी रिपोर्ट में आके आपसे सैटरडे को लेने वाली हूँ. जी हाँ, अपना ख्याल रखा कीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. Jio Bindas. Radio.

0: presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

क्यों नहीं हूँ, कितना बेसुरा हो जाता है यार। यार मुझे नहीं समझ लगता, लेकिन हर बार दिमाग लगाना जो है वो जरूरी नहीं होता। वीकेंड आ गया, आप दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, जिस बातों पे जिस काम पे आपका दिमाग लग रहा है छोड़ दीजिए उसे, दो दिन के लिए हैप्पी वीकेंड है जी। और बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन, और सब कुछ बता दो यार, जो भी आप कहना चाहते हो। मैं 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ। 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है यार। चलिए बढ़िया वाली शाम की शुरुआत कर रहे हैं, शो भी शुरू हो गया, सिमरन कौर भी आ चुके, तुसी कितने सोने हो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
3: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: ਚਾਹੀਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ। और वीकेंड ने आगे से क्या बोला, और ये दीवाना दो दिन रुकने वाला है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वाला वीकेंड है, और वीकेंड के टाइम पे हम सब प्लान्स जो है वो ढूंढते हैं। सो अगर आप फुटबॉल लवर हैं, अगर आप नहीं भी हैं तो भी लोग क्रेजी हुए जा रहे हैं यार फीफा वर्ल्ड कप के लिए। आज का मैच बड़ा खास है यार, फ्रांस और मोरक्को के बीच में रात के 11 बजे ये मैच होने वाला है। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो यार, 3311063 पर आप मुझे बता सकते हैं। एंड बैठे बैठे अगर मैंने भी मैच देखा तो मैं यही बोलने वाली, अरे ये वाली टीम गोल करेगी, वो वाली टीम गोल करेगी, इतना ही करूंगी यार, उतना ही बहुत होता है, जरूरी नहीं है। सिमरन कौर तुमको पूरी की पूरी नॉलेज हो फुटबॉल के बारे में, वाइब समझती हूँ, मुझे फुटबॉल नहीं समझता। सिमरन कौर है आपके साथ जी बिंदास।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर। In association with download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
1: your trusted remittance partner.
3: Ab suniye, Olive ka zabardast hai.

0: चल मैं आई
1: नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर
0: भाई ये बहुत बड़ा झोल है जब तक गाना चल रहा होता आप अपने आप को खुद को सुरीला समझ रहे होते लेकिन जैसे गाना बंद होता है ऐसा लगता रहे यार सिमरन कौर क्या जरूरत थी ऐसा गाना गाने की अभी फिलहाल यहाँ पे आपको जरूरत है जाने की क्या बात है राइम कर दिया यार मतलब समझ रहे हो आप क्रिएटिविटी का लेवल सो यहाँ पे जाने की क्या जरूरत है क्योंकि गर्मियां हैं गर्मियां आम का सीजन है और ऐसे टाइम पे पाकिस्तानी मैंगो जो क्या कहते हैं फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है आज से 6 बजे इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी एंड फिर ये 10 दिन तक चलने वाला है और मैंगो के साथ साथ मैंगो की बहुत सारी उससे बनी हुई ट्रीट्स जो है वो डेफिनेटली आपको सुगवाकिफ में मिलने वाले हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को वैसे तो पता है लेकिन रिमाइंड करवा दूं 5:34:27 स्टूडियो की घड़ी पे
2: टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय दानातल पहाड़ द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुगवाकिफ अलखोर
0: सुंदरी रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जियो बिंदास एंजॉय करो

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुना है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
3: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

हाँ जी प्यूडीपाई देखो इंडिया का शनिवार और कतर का शनिवार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। शनिवार रहती इंडिया वालों को इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि अगले दिन संडे है, और कतर वालों को इसीलिए शनिवार को नींद नहीं आती कि अगले दिन संडे है क्योंकि अपना फर्स्ट वर्किंग डे है। लेकिन

0: ऐसे कल्ले कल्ले हो, वीकेंड का टाइम है, क्या करने वाले हो, क्या प्लान है, वो भी आप मुझे बता सकते हो। लेकिन ये क्या चल रहा है
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। यार सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते करते ना एक चीज में कल नोटिस कर रही थी कि लोगों ने ना अपनी पूरी लाइफ जो है ना, जो भी उनकी लाइफ में चीज घट रही है, ठीक है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे उनको जॉब मिल गई है, चाहे उनको घर खरीदना है, चाहे उनको गाड़ी खरीदनी है, पूरी की पूरी जर्नी जो है, चाहे वो वेट लॉस वाली है, पूरी की पूरी जर्नी जो है वो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाली है। डे वन से लेके डे 100 200, जब तक उनका ड्रीम जो है उनको अचीव नहीं हो जाता, वो हर रोज वीडियो डाल रही है और हर रोज लोग उनका वीडियो जो है वो देख भी रहे हैं कि इनकी जर्नी जो है वो कहां तक पहुंची है। यार ये भी अलग तरीका है सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज करने का कि आप अपनी जर्नी डाल दो, क्योंकि लोगों को पर्सनल लाइफ में बड़ा मजा आता है। यार क्या बोलते हो, 6:07 46 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hello, I'm Neena Gupta.
3: Neena Gupta. Radio.
2: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: रेडियो ओलिव नंबर वन।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: आप लोगों के लिए चल रहा है, लेकिन एक नंबर नंबर मौसम भी होता तो मजे आ जाते यार। मौसम
1: सर क्या बात, ये बात है।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर 1 आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मैं हूँ सारिका।
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। रेडियो ओलिव नंबर वन।
3: ये गाना उनके लिए प्ले हो रहा है जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे और किसी को पता नहीं है, तो बताओ यार हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। 3, 2, 1 एंड गो।

0: चढ़ गए।
1: हाँ जी आपको गाने अच्छे लग रहे हैं। मैं यही कोशिश करती हूँ यार वीकेंड के टाइम पे आपको अच्छा म्यूजिक मिल जाए, सिर्फ वीकेंड के टाइम पे नहीं हमेशा ही अच्छा म्यूजिक जो है वो आपको मिल जाए। लेकिन आज वीकेंड का आपका क्या प्लान है यार? अगर आप मूवीज देखने का शौक रखते हैं और आपको ऐसी हॉरर फिल्म पसंद है तो ईविल डेड बर्न जो है वो आज रिलीज हो चुकी है अपने कतर में और मजा आने वाला है डेफिनेटली आपको देखने का, तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा फन करने का और हंसी मजाक करने का मन है तो कल एक फिल्म जो है धमाल 4 रिलीज हो रही है उसको भी आप देख सकते हैं। आपका क्या प्लान है आप मुझे बताइए। 6:53 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, एक नंबर आपका मैं जो है वो गाने चला रही हूँ, लेकिन मैं आपका नाम भी पूछ रही हूँ, अपना नाम जरूर बता देना। तेरी

0: 96.3 FM Gio Bendaz.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दें? मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
3: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million riyals cash prizes.
2: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 riyals growth par paiye ek coupon.
3: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
2: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

दिले नादान तू बेवफा हो जा, इस दिल पे बहुत असर होता है यार। आप बेवफा हो या सामने वाला बेवफा हो, आप खुद तो नहीं हो सकते, लेकिन जिसने आपके साथ कर दी बेवफाई आपके दिल पे हो जाएगी। So, इस दिल का ध्यान रखना। जरूरी है। 7:05 36 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। फ्री कार्डियोलॉजी मेडिकल कैंप जो है वो 17 जुलाई को लगने वाला है, सुबह 8 से लेके दोपहर 12 बजे के बीच में, नसीम मेडिकल सेंटर वक्रा में, जहां पर बहुत सारे टेस्ट जो सर्विसेज जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन है, ब्लड प्रेशर चेक है, रैंडम ब्लड शुगर चेक है, एंड जीपी कंसल्टेशन है, बॉडी मास इंडेक्स है, रैंडम बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप मेडिकली चीजें दिल से जुड़ी जो है बहुत ज्यादा ईसीजी इफ अगर डॉक्टर को लगा तो, है ना। सो ये सब कुछ जो है वो आपके लिए होने वाला है। मेक श्योर कि आप इसके लिए रजिस्टर जो है वो करवा लीजिए 17 जुलाई को, याद रखिएगा, सुबह 8 से लेके दोपहर 12 बजे तक नसीम मेडिकल सेंटर में, और फ्री आपका ये चेकअप है वो होने वाला है। सो टाइम निकालिए और अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा करवाइए चेकअप।

0: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 एफएम एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 एफएम ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल marketing campaigns simple effective integrated call 3009-1063 or 3082-1063
1: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ
4: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

गाने में कितना प्यार है, दोनों में कितना प्यार दिख रहा है, और इस फिल्म में भी बड़ा प्यार दिख रहा है। मैं क्यों इतना प्यार प्यार प्यार

0: कर रही हूँ। अरे बताती हूँ यार, अरे राइम हो गया यार। प्यार किसी से होता है फिल्म में, मतलब ट्विंकल खन्ना एंड सलमान खान जो है बहुत ज्यादा क्यूट लगे, लेकिन लेट मी टेल यू, ये सलमान खान एंड ट्विंकल खन्ना इस फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी, दोनों एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। वो सेट पे आते थे, डायलॉग बोलते थे, शूट करते थे और चले जाते थे बिना किसी इंटरेक्शन के। ऑफ कैमरा कोई भी इंटरेक्शन दोनों में होता नहीं था। ऐसे टाइम पे यार मतलब सही तरीके से परफॉर्म करना बहुत टफ है, लेकिन कलाकार जो है ना, यहीं पर कलाकार की कलाकारी जो है ना वो चेक होती है। सो या मैंने सोचा आपको बता दूँ इसके बारे में। एंड उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, वीकेंड का टाइम है, अगर आपका फिल्म देखने का मन होगा घर पर बैठ के, सो आज रात शायद 9:30 बजे फिल्म जो है पति पत्नी और वर दो, अगर आपने थिएटर में नहीं देखी थी तो फिल्म नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। आज रात आ जाएगी, नहीं तो कल तो आ ही जाएगी ये फिल्म। एंड उसके साथ साथ अगर आपको नहीं पता लगा है, मिसमैच्ड सीजन 4 जो है वो आने वाला है, इसकी शूटिंग जो है वो चालू हो चुकी है। सो या 7:20:25 स्टूडियो की घड़ी पे एक नंबर गाने, हैप्पी वीकेंड है जी। कह देना चाहिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ
1: गलत मेरी बातें।
0: तू खुश रहे यार जी गोविंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
3: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening. Make your drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: हाँ जी दसो फिर
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ट्रिगर ट्रिगर जो है वो इंसान को अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं। किसी के लिए एक ट्रिगर होता है, किसी का बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट होते हैं, लेकिन आपके जो ट्रिगर पॉइंट है ना, आपके अपने जो हैं वो जानते हैं, आपके फैमिली वाले जानते हैं और आपके दोस्त जो हैं वो आपके ट्रिगर पॉइंट जो है वो जानते हैं। सो दोस्त और फैमिली वाले कभी भी आपको ट्रिगर नहीं करते क्योंकि उनको पता है आपके ट्रिगर पॉइंट के बारे में। बट अगर इसके बावजूद भी अगर चाहे वो आपकी फैमिली में, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में है, चाहे वो आपका पार्टनर है, अगर वो आपके ट्रिगर पॉइंट पे हिट कर रहा है तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक ख़राब हो जाती है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी को तभी ट्रिगर करेगा, ट्रिगर पॉइंट पे उसके करेगा जहाँ पर उसको उसका रिएक्शन चाहिए होगा। सो कभी भी जो आपका अपना इंसान होता है ना, वो आपको ये जानते हुए कि आपको कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, उसको कभी ट्रिगर नहीं करेगा। सो अगर आप ट्रिगर करने के बाद ये बोल रहे हो कि अरे यार इट्स ओके यार, मुझे पता नहीं था दिस एंड दैट, तो वो गलत है। सो मेक श्योर कि आप कभी भी किसी को ट्रिगर ना करें अगर आपको उसके ट्रिगर पॉइंट पता है तो। डोंट डू दैट। बहुत बड़ी बात होती है आप किसी को ट्रिगर करते हो, याद रखो वापस लौट के नेम गेम खेल रही हूँ, ठीक है? सीरियस नहीं होना ज्यादा। 4, 3, 2, 1 एंड गो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास।
2: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn।
3: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का टेंशन। तो फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7:50 ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ सीधा सीधा साफ साफ अपना नाम जो है वो मुझे बता दो क्योंकि आपका नाम मैं रेडियो पे ले दूंगी अगर आप मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दोगे उससे पहले मुझे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको बताना पड़ेगा मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3 एक बार वापस से बता रही हूँ 3311106 3 इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ क्विकली आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए शम्मू जी थैंक यू सो मच विष्णु जी थैंक यू सो मच इंतिशार जी थैंक यू सो मच असलम जी थैंक यू सो मच समी जी थैंक यू सो मच प्रिंसन जी थैंक यू सो मच मलिक जी थैंक यू सो मच जाकिर जी अजय जी थैंक यू सो मच सईद नदीम जी थैंक यू सो मच पाकी जी थैंक यू सो मच नौमान जी बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर जी थैंक यू सो मच इम्तियाज थैंक यू सो मच आसमान जी थैंक यू सो मच शोएब जी थैंक यू सो मच नौमान जी थैंक यू सो मच जस्मिन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए इस्लाम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए क्विकली सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजिए 3311106 3 पर जुनैद जी थैंक यू सो मच इश्तियाक जी थैंक यू सो मच हैंजो क्रिश जी थैंक यू सो मच खदीजा जी थैंक यू सो मच नेहा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए सुमैया सफीउल्ला जी थैंक यू सो मच अजीज जी थैंक यू सो मच मैक थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए रिवू जी थैंक यू सो मच सीमा जी थैंक यू सो मच कथूरिया साहब थैंक यू सो मच प्रियंका पीयूष जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए पाली जी बहुत बहुत शुक्रिया अगला गाना शुरू होने वाला है नूर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए सूरज खत्री जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए अमीला जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए खेमराज जी थैंक यू सो मच जुबैर जी थैंक यू सो मच शाइस्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए एंड दैट्स वसीफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए एंड दैट्स इट फॉर नाउ अब जिन जिन लोगों के मैंने खलील भाई जी थैंक यू सो मच बिस्मा जी थैंक यू सो मच मैं अपनी गर्दन घुमा लूंगी आप लोगों के नाम नहीं रुकेंगे यार सो अगर आपने अपना नाम सुन लिया सो थैंक यू लिख के भेजो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के जरूर भेजना

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
3: इन एसोसिएशन विद।
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।

0: म्यूजिक जो है वीकेंड के टाइम पे ऑन है। और बताओ क्या हाल है, ठीक हो? जेंजी स्लैंग यूज की जाती है, टी एस फ्राइंग मी। टी एस का फुल फॉर्म प्लीज आप देख लेना, वो मैं बोल नहीं पाऊंगी। सो ये होता है कि जब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा फनी लगती है, एक्सट्रीमली फनी लगती है, तो उसके लिए आप बोलते हैं टी एस फनिंग, यू नो, फ्राइंग मी। सो या बहुत ही काफी कूल वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा जेंजी वर्ड है जो कि आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगता है और आपको लगता है कि यार ये जो वर्ड बोल रहे हैं इसका मतलब तो वो है ही नहीं है बिल्कुल जो ये सुनने में लग रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ Zabardast evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

वाइब आपकी सेट हो जाएगी अगर आपका नहीं भी मन है कहीं पे यू नो वीकेंड को एंजॉय करने का. लेकिन वीकेंड को एंजॉय करते करते थोड़ा अपना सेफ्टी का ध्यान भी रखिएगा. कभी कभी क्या होता है कि बस एक ओके और आपका अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है. सो कल की मैं आपको बात बताती हूँ. मेरे फोन पे, मेरे व्हाट्सएप पे मैं नींद से उठी थी, ठीक है. सो आगे से मैसेज आया हुआ मेरे व्हाट्सएप पे, अलाउ मूविंग योर व्हाट्सएप अकाउंट टू अनदर फोन. ओके, और वो अनदर फोन है आईफोन 16 प्लस. ओके, तो मेरा 16 प्लस नहीं है. सो आई एम लाइक ओ माई गॉड, उसमें दो ऑप्शन थे, अलाउ और डू नॉट अलाउ. ओके, अगर मेरा एक भी क्लिक हो जाता अलाउ तो मतलब हैक हो गया मेरा साथ की साथ फोन. सो मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने डू नॉट अलाउ पे किया. उसके बाद फिर मतलब मेरे को एक और मैसेज आया कि किसी ने आपका नंबर जो है वो कहीं और रजिस्टर करने की कोशिश की है. उसके बाद फिर मैंने सिक्योरिटी कोड वगैरह ऐड किया. सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये मैं आपको इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि ये मेरे साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है. बहुत सारे के साथ रेगुलरली हो रहा है, फोन हैक हो रहे हैं, ईमेल आईडी हैक हो रहे हैं, आपका जो है अकाउंट हैक हो रहे हैं, एटीएम जो है वो आपका उसके ऊपर बस ही नहीं चलेगा, कोई और अकाउंट हैक हो रहे हैं आपके, है ना. सो मेक श्योर कि आप अच्छी सिक्योरिटी लगा के रखिए और ध्यान रखिए, क्योंकि ऑनेस्टली यार सोच के भी ऐसे दिमाग जाता है कि यार कैसे कर लेते हैं.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर.
3: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Naseem Medical Center, Al-Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First, the group fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव 106.3 FM यू आर लिसनिंग टू क्लब ओलिव.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: चांदनी रातें
2: अब सुनिए।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास